0: जिस मैसेंजर ने जी फोर
1: वन जीरो नाइन सिक्स फोर
0: Can you please open your follow-up at 1035 Green Bend Drive in Windsor, Alabama, 1505?
1: 1505.